0: penalty of $3,000. Contractors who fail to take all reasonable steps to ensure that construction sites are smoke-free may face a maximum fine of $400,000 upon conviction. Start it right. Zero smoky on site. Smoke-free culture. All unite. It's my
1: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on life.
2: Life is for the living. You have to make the most of it.
1: On family.
2: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
1: Life with drugs. No life at all.
3: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
4: Namaste, Sat Sri Akal, Salam, Kidda Ho Ji Sare Vadiya, Paji, Bahut Vadiya. Aaj hai 21 August 2026. Hamare paas hai 1, 2, 3, 4, 5 announcement. To shuru karte hain ji hamara show with our very first announcement. Ye hai admission arrangements for nursery classes in kindergartens for the 2027-28 school year. Government ne 2017-18 school year se kindergarten education scheme shuru kiya hai. Is scheme mein join kiye hue kindergartens sirf bachcho ko admit karte hain jinke paas valid registration documents hain, yani registration certificate for kindergarten admission ya kindergarten admission pass. Agar aap apne bachche ko 2027-28 school year ke liye स्कीम केजी में नर्सरी क्लास में डालना चाहते हो तो सितंबर से नवंबर 2026 के बीच एजुकेशन ब्यूरो से इलेक्ट्रॉनिक आरसी या एपी के लिए अप्लाई करना जरूरी समझे। अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो पेरेंट्स जिनका बच्चा हांगकांग रेजिडेंट है, 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पैदा हुआ हो और 2027-28 में K1 क्लास ज्वाइन करेगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन IM स्मार्ट ऐप या EDB की वेबसाइट से कर सकते हो। हार्ड कॉपी फॉर्म और गाइडेंस नोट्स EDB वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस से ले सकते हो। कोई सवाल हो तो ऑफिस आवर्स में EDB के किंडरगार्टन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 2 से कॉन्टैक्ट कीजिए 3540-6808 या 3540-6811। ओके, अगला जो अनाउंसमेंट है this is cervical screening. Hong Kong mein mahilaon mein cervical cancer bahut common hai. Regular screening karwao to isko bahut had tak roka ja sakta hai. Agar aapki umar 25 se 64 saal ke beech hai aur sexual experience kiya hai to regular cervical screening zarur karwaye. Bahut si mahilaon jinko HPV virus hai ya cancer shuruaati stage mein hai unko koi lakshan nahi dikhte. याद रखो चाहे कोई लक्षण ना हो, HPV वैक्सीन लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो, तब भी स्क्रीनिंग करवानी बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग करवाने के लिए मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या NGOs के पास जा सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग भी ले सकते हैं। नंबर है 3166-6631। जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में HPV सेल्फ सैंपलिंग की सुविधा शुरू हो गई है। हांग कांग आइलैंड के नंबर्स हैं 2855-1333, कालून के हैं 2855-1222, न्यू टेरिटरीज के 2851-1722। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.cervicalscreening.gov.hk पर जा सकते हैं। अपना ख्याल रखो, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ। ओके, बढ़ते हैं हमारे तीसरे अनाउंसमेंट पर। This is false self-employment. काम शुरू करने से पहले अपना status clearly समझ लो, आप employee हो या self-employed. कई चीजें matter करती हैं जैसे employment rights और benefits. Status सिर्फ employer नहीं, दोनों parties decide करते हैं. अगर employer आपको force करके self-employed बना रहा है तो आप मना कर सकते हैं. अगर आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो लेबर डिपार्टमेंट के कंप्लेंट हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2815-2200। बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन याद दिलाता है बहुत गर्मी में हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक से बचिए। सेफ रहने के लिए रेगुलर पानी पियो, कैफीन और अल्कोहल से बचो, हल्का और ढीला कपड़ा पहनो, हवादार या एयर कंडीशन्ड जगह में रहो, बाहर ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करो, आउटडोर एक्टिविटीज़ सुबह या शाम को प्लान करो, आउटडोर वर्कर्स रेगुलर ब्रेक लो और छाँव में आराम करो, बच्चे बुज़ुर्ग प्रेग्नेंट महिलाएं और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग ज़्यादा केयरफुल रहें, बच्चों को कभी भी बंद गाड़ी में अकेला मत छोड़ें, यूवी इंडेक्स हाई हो तो सीधा धूप से बचो, SPF 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन लगाओ, यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहनो और छाँव में रहो, अगर चक्कर आए, सिर दर्द हो, उल्टी जैसा फील हो या कन्फ्यूजन हो तो तुरंत आराम करो और डॉक्टर से मिलो, गर्मी में अलर्ट रहो, कूल रहो और अपना ख्याल रखो। ज़्यादा जानकारी के लिए www.chp.gov.hk पर जाएं। ओके, आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर, देन आफ्टर दैट वी गोना प्ले ऑल द सॉन्ग्स इन वन गो। ओके, दिस इज वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम। वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम, जिसे शॉर्ट में WFA कहते हैं, अब एप्लीकेशन के लिए खुला है। ये हाउसहोल्ड के नाम पर अप्लाई होता है, पूरा हाउसहोल्ड हांगकांग रेसिडेंट होना चाहिए। अगर आपके घर वालों के टोटल वर्किंग आवर्स इनकम और एसेट्स लिमिट के अंदर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक महीने में एक से ज़्यादा जॉब्स के वर्किंग आवर्स काउंट किए जा सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों। अलाउंस के टाइप्स हैं, टोटल 144 आवर्स या उससे ज़्यादा तो वो है बेसिक अलाउंस, 168 आवर्स या उससे ज़्यादा वो है मीडियम अलाउंस, 192 आवर्स या उससे ज़्यादा वो है हायर अलाउंस। हाउस होल्ड की इनकम के हिसाब से फुल रेट, थ्री क्वार्टर रेट या हाफ रेट मिल सकता है। फुल रेट है बेसिक के लिए 1150 हांगकांग डॉलर पर मंथ, मीडियम के लिए है 1380 हांगकांग डॉलर पर मंथ, हायर के लिए है 1610 हांगकांग डॉलर पर मंथ। हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस भी मिल सकता है, उसका फुल रेट है 1610 हांगकांग डॉलर पर मंथ पर चाइल्ड। जो घर WFA ले रहे हैं वो साथ में कॉम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं ले सकते। पूरी डिटेल्स, इनकम, एसेट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए वेबसाइट चेक कीजिए www.wfa.gov.hk। कोई सवाल हो तो 24 आवर हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2558-3000। Alright guys, that's it for me tonight. So I'm gonna just list out the name of songs and who requested it. So pehla gana hai ji, Anonymous ne request kiya. It's Kala Kala Tara by Kulbir Ginger. Then we've got Afai who requested Jutti by Nomi Jatt. Then we've got Bilal who requested An Milo by Gulab Sidhu. Then we've got Khan Bhai who requested Parche by Gil Manuke. Then we've got Yogi Jatt who requested Cut by Watan Sahi. Then we've got Sunny Singh who requested 7 Days by Ladi Chalja. Then we've got Malik Zain who requested Don't Worry by Karan Aujla. Then it's Happy Karon who requested Saga of the Khadkus by Prem Tillo. Then we've got Yaseen and Sharia who requested Cut by Ram and Prince Randhawa. Then we've got Kalpana who requested Diff by Tyson Sidhu. Then we have Amrit who requested Parche by Karaj Randhawa. Then it's Rajveer who requested Self-Trained by Khan Bani. Then last but not the least, Amrit Gill who requested Off-Roading by Khan Bani. Alright guys, that's it for tonight. Milte hain ji aapko next Friday, same time, same place. Tab tak ke liye ji chill karo, tension na lo, te chardi kalate raho. Rab rakha, good night and goodbye.